0: कहिए क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
1: कैसे?

0: लाहोरे दाई
1: के हो कांची
0: लाहोरे को फैशन कसुरे
1: आ तस्ता जावा
0: बाबे कस्तु गम क्यों को हो
1: लो भनु तो
0: लो
1: लो मादले दाई गम काउनु होस्ता

खुशी है कस्तो रहे छ बिना के न हो गम के को केस्तो सुंदा फुरंग भई लहरे ढलके को लेकिन साले क्या है बंदे चुरुट हिरसल के को केना भूलचस लहरे दाई।